0: ये क्या कर रही?
1: रिपे।
0: किधर सांगो में था? सुनिम तो सांगो में हाँ कम सो। तगास चुम्बक का चिबी। चुम्बक की कोकी रंदे साले शा।
1: यंगा, चेन गनी चिल खलास का चिन डेम्ब्रे चे तो। ओ, ने तो लोसी का चिन।
0: मगो। आज रिंग गंग कौन बोलते हैं? गंग बोलने की। काले काजू, कबाले चंदू मिडो, नार दे दी।
1: 영아, 얘랑 할 주요 검실인 것 같은 거.
0: 장첸주.